0: ना ना नहीं फेंको,
1: नहीं नहीं
0: I'll be out to the grandma.
1: नहीं नहीं ओके.